0: লৈ পাখি হিতকা দিরুন্দে এমমে ফণি হোসাস একমকু এ লোপে বিবে দাহিন্দু কেতরিকমগে ফারুত ফুন্ডু ফুন্ডুবে ইনসানগে মুলি উজুদু করুণাগে খণ্ডকা গেমিগেন্দে রুমিগে হায়াত মিয়দু বেরিবে ফওয়ানি ইফদ কালু আদিরি বিলাগডে শাফিগে ওয়াকিবমুন এনাগে সিকুনি এওয়ানি হাগিগে দুনিয়ে ফুরগস্তি আমিল হুয়ফিনি দুনিয়েগ কুলত সফাশাফা নুসরাগে আদেস্তকায়কু শাফি মালে আন্নম মিসরাবু জহীরু মাফুশিগে গোন্দশুগা আ উম্মিত্তকে কুরহামুন্দিয়া আসকাগে রেবুন্তকাওয়ানি কিহিনে তো বালালুমা ওয়াহকায়কু কুরিয়াদ্দামা ওয়াহক হুশালাদেনি আমনেতরামলা
1: রুমি মিহারো হেরি হাগিগে দুনিয়া ওয়াকিবে এনা মিল্লেন উফদ্দাফা হোফিনি দুনিয়াগে তিরেগা মিহালতুন এনা সালামেনু কুরেজনামা এনাগে সিকুন্ডিয়ে দাইমি গেল্লু মিলি বিদানে
2: ডক্টরকে মি জুমলাতাকুন নুসরাগে মুলি হাসি কাণ্ড দিয়ে তুরু তুরু লামুন নুসরায়ে বিষ্ণুনু গতুগা রুমি মেবগুতু বেনু মানি এমমে বেহে এই শাফি রুমিগে হায়াতুগে হুরিহা উফলাকা উম্মিদে কুলিফামনি শাফিয়া শাফিগে আডু ইবুমুন নতে শাফিগে আতুগে বিহুং ইহসাসবমুন রুমিগে মি আন্দিরি দুনিয়েন আলিকামেন আতুবে দানেকামা নুসরাগা বলকুরি রুমি মিফদা নাজুকু হালতেগ ওয়েকান ইগুমুন শাফিগে হিতুগে হামদরদি উফেদেনে এদে মিহুংগে মেদুগা কমমিফদা মাসালে জেহিফোতাস শাফিগে হিতুগে এমমি ফুমমিনুগে রুমি এটাকা লয়পেন ওন্নানেকান নুসরায়ে ইয়াকিন এতান ইরাকু বিসনান ইনুমফউ নুসরা এনগে ফোনো নেগি ऐ तुरु तुरु ला हालो शाफी के नंबर गुड़ाले फोन रिंग व मुंदिया नम बस शाफी फोन नुनागा नुसरा हिवरु एलुवे नुला देवन फहर बस कुली हम ए बस जवाब नुलिबे नुसरा गलोलुम करुण हिलुनु
3: अली प्लीज अली शाफी फोन नुनागा बला
2: এনা মাডু মাডু বনেলি থিম্মনা ফাহারা গুলমুন কুল্লিয়েক ফোন নেগি আনি কোলং ইউনি শাফিগে বারু আডু
4: হ্যালো নুসরা কি কুরাম মেগাডি গতি গুলানি
3: আলে শাফি প্লিজ আডু হাবলা রুমি গে হালো আর গোস এনা মিহার সতি হসপিটাল গ বা ওয়াফা ডক্টর বনেনি এনা গে সিকুডিয়া বারা বড়ং আসর কোফিয়ে এনা হেলা হুনা বাগুতে সিবানি হুওফেনে গোলে হে এনেগে দুলুং হামেকানি কেনে শাফিগে না শাফি আহারেন দান্নে শাফি রুমি দেখে লোভবাবারু মিবগুতু রুমি সালামে কুরেবেন ওতি হামেকানি শাফিয়া শাফি এমমে ফাহারকু এনেগে গাতাং আস্তি বলা এনে শাফি ফেনমু হুরিহা কামে রাঙ্গালু বেদান প্লিজ শাফি এনা মারু আন্দু কন্নুলা
4: নো নুসরা আহান্ন কন্নু দেবেন
5: শাফিকে জবাব ওই বারে সাদা কোন হারুকশিক
4: রুমিয়া আহারিমেগে তেমেদু কেন হুরিহা গুলমে মিহারওয়ানি কেন্ডিফা আহারি রুমিগে গাতা দিউমা কি দেম বাণিকা মেন্নু রুমিগে হালতা মেদু আহারিম স্থিরবে বারে দেরবে একমক আহারিন দিউমু কান্তত্তং ইতুরা গোস বন্নু কামেন্নুয়ানে নুসরা এমিকা রাগালং এগেনে
3: শাফি তিহা হিং হারু নুয়ে বালা রুমি অতি ফুরাণে আহাঙ্গুরাম করেন সে শাফি হাম আসবেস রুমি দু কলং খেরে রুমি তিহরি ওয়ারি কফে রুমি আদি মালা বুনং খেরে নে তা শাফিয়া
4: আহারে মে বুনে নু দেবেনে আহারে গে দিরি ওল মার বাদল উচ নুসরা বিসনে নে কবা আহারে উম্মিদ কুরা দেন তি ওয়াক দক্কং গুলন্যা আহান নউ দগু ওয়ান তি ওয়াক দক্কং দেন নু গুলাত
5: মেহেম বুনম ফহ শাফি ফোন কাণ্ডালি নুসরা ফোন পালাহাটাগেন হুরি কাপুল কুরন্দা তিবেফা শাফিকে এ হারুকশি বস্তাকুন এনকে হি কুদি কুদি কল্লি এনা রুমিকে মুন পালালি রুমি আদিবসতি হামা এ হুফিনি দুনিয়েগা এনাগে হায়াতুগে হামাইকানি উম্মিদুগে দরু শাফি বন্ধ কল্লি নুসরা গন্ডিগে ইশিন্দে মুনুগে আঙ্গালা বার রুম ফেশি নুসরাগে ফোন কাণ্ডালুমফহু শাফি এন্দুগে ওশোভেলি নিদেতো নমস এনেকে দিলোলা নিদিবানি রুলিবেফা নুসরাগে এ আদেশতাকা রুমিকে হালতু বায়াং কদ্দিন হিদ্দতি জুমলাতং এনেগে কমফেত দুশুগা গুগুমুন্দিয়া শাফিগে হিম মিয়াদু আজকাগে মচ্চা দিলা লাফবি নমস রুমিকি এনেগে নজরুগা দুহাকুস কুভেরিয়েনু ರೂಮಿಯಕಿ ಏನಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಉಂದಗು ವಗುತಿದ ಹುಗ ಏನ ಎಟ್ಟಕ ಗುರುಪಾಂಬಿ ಏನೆಯಂ ಇಂತಿಹಾಯಂ ಹೇಹುಯದೆ ಇನ್ಸಾನೆ ಎ ಹೇಯೊಕಂ ಹಂದಾಣ ತಾಲುಮಕಿ ಶಾಫಿಗೆ ಜಮೀರು ತಂದೆ ಕಮೆನು ಇರುಗಂಡಕು ಸಿಕುಂಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಜಾಣೆಗೆ ತೆರೆ ಗೌಫಾ ಮರುಪಲಿಕಂ ಇಸ್ವೆ ಶಾಫಿಯನ್ನಿದುನಿ ವದಿಸ್ವಾಂಗುಳಿನಿಕೊ ಜಹಿಗೆ ಹ್ಯಾದು ಬಹುಗೆ ಹೆಂದುನು ಮಾಂಫುಶಿಗೆ ಹಿಕ್ಕಾಮು ಮಾ ಹೌಲ್ಗೆ ಹವೀರುಗೆ ವಗುತೆಗ್ಗ ಶಾಫಿ ಅಸ್ಕಾಯ ಪತ್ತಲು ಕುರಿ ಏನಗೆ ಮೂನುಮ ತಿಂಫೆಣ್ಣ ಹುರಿ ಮಿಲಾಫಾವಾ ಕುಲವರುಂ ಅಸ್ಕಾಯ ಕೊಮ್ಮೆವಿಸ್ ಕಮೆ ಗೋಸ್ ವಿಚ್ ಕಂ ವಿಸ್ನುನು ಶಾಫಿವರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊಂಡೇಗ ನುಸ್ರಾದಕ್ಕೆ ವಾಹಕತಂ ಅಸ್ಕಾಯ ಕಿಯಾದಿ
6: ಅಸ್ಕಾ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಲು ವರ ಗೋಸ್ ಏನೇವತಿ ನಫ್ಸಾಣಿ ಗೊತ್ತು ವರ ಬೊಡು ಬಲಿಮಡು ಕಮೆಗೆ ತೆರೇಗ ಆಹಾರ ಬೇಣಮೆಣ್ಣು ರೂಮಿಯ ಲೋಬಿಗೆ ಗುಡುಮೆ ಬಾವಾಗ ಏಕಮುಖ ರೂಮಿಯಕಿ ಆಹಾರಿಂಗ ವರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಕ್ವೇರಿ ಗೊತ್ತುಗ ಅಪದೋಸ್ ಬಾಟ್ಟಂ ಬೇಣು ಮಾಮಿಹೆ ರೂಮಿ ಆಹಾರ ನೆಟ್ಟಕ ಕೊದ್ದಿಂಗ್ ಹೇವಕಂತಕ ಆಹಾರ ಪುರಗಸ್ತೇಣಿ ಕಿಹಿನೆ
5: ಶಾಫಿ ಇಸ್ತಹಾಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ವಾಹಕದಕ್ಕೆ ಶಾಫಿಗೆ ವಾಹಕದಕ್ಕೂ ಅಸ್ಕಾಗೆ ಮೋನು ಮತಿಂಗ್ ಮಾಯೂಸ್ ಕಂಪೆನಿಗೆಂದಿಯ ಎನಗೆ ಹಿತುಗ ಕೂಡ ಹಸದವೆರಿ ಕಮೆಂಗು ಫೆದುನು ನಮ್ಮ ವಿಸ್ ಶಾಫಿ ವಗುತು ಅಸ್ಕಾಗೆ ಅತುಗ ಹಿಫಾಲಮು ವಿಸ್ನಾದೆ ವಿಷಿ
6: ಅಸ್ಕಾ ಅಡು ಹಾಬ್ ಆಹಾರ ಲೋಬಿವಣಿ ಹಮೇಕಣೆ ಅಸ್ಕಾದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕಾ ದೂ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಏಹೆಂ ಎವ್ವಿಸ್ ಮೇಗೆ ಗಾತತ್ತಾಕ ಆಹಾರೆಂ ಬೇಡಮೆಣ್ಣು ಆಹಾರೆ ಮೇಳೆಣಿ ರೂಮಿ ಗಾತುಕ ಎಣ್ಣು ಆಹಾರೆ ಮೇಹುರಿ ಅಸ್ಕಾ ಕುರಿಮತೀಗ ಅಸ್ಕಾ ಎ ಫೆಣ್ಣ ಹಿಸಾಬುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾಕು ಆಹಾರೆ ಮೇಗ ಮಿ ಹೇದಕುರ ವಗುತಕ ಬದಲೆ ನಾಣ್ಣ ಮಿ ಗುಳುಮಕ ಕುಡವಿಸ್ ಬದಲೆ ನಾಣ್ಣ
5: ಶಾಫಿಗ ಅಡುಗ ಹುರಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ದರಿಕ ಅಸ್ಕಾ ಫುಣ್ಣೆ ವಾಯಿಲೊಮ್ಮ ಫಹು ಸುವಾಲ್ ಕುರಿ
7: ದೆಂಗ್ ಶಾಫಿ ಬೇಣುಮಣಿ ಕೊಂಗೊತೆ
6: ಆಹಾರೆ ಬೇಣುಮಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಹರಕು ಮಾಲಿಕುಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಲು ಬದಾದ ಏನಾಯ ಹೇಯದೆ ಮಿಹಿಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಏಯ್ ಆಹಾರಿ ಕುರಂಜೆಯ ಕಮೆ ಕಮದ್ದಿಗೆಣಿ ಏನಾಯ ಮಿವಗುತು ಆಹಾರಿಂಗೆ ಎಹೀತರಿ ಕಂ ಬೇಣು ಎಫವಾತಿ ಆಹಣ್ಣ ರೂಮಿಗೆ ಗುಳು ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಗ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಗೊಕ್ಕಿಯಾದೆ ಬೇಣುಮಣಿ
5: ಶಾಫಿ ಎನಗೆ ಹಿತುಗೆ ಎದು ಹಾಮಕುರಿ ಅಸ್ಕಾ ಇರುಕೊಳಕು ವಿಸ್ನಂ ಹುರಿ ಶಾಫಿಗೆ ತೆದುವೆರಿ ಕಮ ಏನ ರೂಮಿಯ ಟಕಾ ಬಾಟ ಇನ್ಸಾನಿಯ ತುಕಂಫೆನಿ ಅಸ್ಕಾಗೆ ಹಿಮ್ಮಡುವಿ
7: ಶಾಫಿ ಆರೆ ಶಾಫಿಯಂಗ್ ಇತು ಬಾರ್ಕುರ ಶಾಫಿ ದುವಾಕು ಎಸ್ ಆರೆನ್ ದೂಕೊಂಡು ನುದಾಣೆ ಕಂಗೆ ಒಮ್ಮಿದು ಆರೆನ್ ಕುರ ಏಮ್ವೀಮ ಶಾಫಿ ಮಾಲಗುಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಲು ಬಲಾಲ್ಮಕು ಆರೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಮಸಾಲ ಇನ್ನೆ
5: ಅಸ್ಕಾಗೆ ಎ ಜುಮ್ಲಾ ಯಾಯಕು ಎ ದೆಮೀಹುಂಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಇತು ಬಹರ ಲೋಬಿಗೆ ಆ ಗುಳುಮೆಂಗ್ ಉಫಿದಿಗೆಂದಿಯ ಶಾಫಿಗೆ ಹಿತ ಬೊಡು ಲುಯಲ್ಲಿ ಬುನು ಏನ ಲಸ್ನುಕೋ ಮಾತು ದೀವು ಮತ್ತ ಯಾರುವಿ

0: para esta tuve. Ni canjile, pat. Aharen rashun beruka masekkatu gawlen jehmu rumi aduruga hunnan je komme sikuntaki aharna ke ko rangu dagu wagute ekamako miharu mihar meti huriha kame hama ekang elifa
1: shafi warang oga tere kamai ko rumi ko hagen gos sitting room ke sofa ga bendi adi rumi ke atuga hi faata ken hure wahak dakka mundia
2: shafi tere wara baru bale fado ale
0: आहारिंग के कांतत ताऊ का तिहाब बोर्ड अंगुले का नुआने न तिहेंगा बदो आहारिंग के हितु मत करनु होरे बदो रूमी का अमिल ऐसी हतवस पदम आने न
1: शाफी हिने तुम बेली एना रूमी के कानाइन एना के दिया तुगे तेरे हल्ला फिर मां फिशी
0: रूमी अट्टा का खुद्दे वे विस कम की आहार नवार बलि कमे गिरनुआन कमेन्नो �

0: राज्यगे एक्तिसोदु थी दंगलु मिस्रा बेग्गा कमशा कुरियं वेतांगा क्रेडिट रेटिंग दक्कुरुमकी वरन नादिरु कमेकमा माली कंकमा सरुकारगे कुंफुनितका बेहे वुजारें विदाल वेजे। हंगुरामेगे दुवस वरुवेस राज्यगे एक्तिसोदु हम मगुगा हिफेट्टुमायकु फिचुं राज्य दीफा एक क्रेडिट रेटिंग बनी मातिकोफा। एगोतुं फिचुं एमएफहु नेरुनु रेटिंग का वने कोरियन राज्य का सीसी रेटिंग सीसीसी या मातिकोफा। मैं कमागुले गोतुं पीएसएम न्यूज़ म्यूज के राज्य में अधु प्रोग्राम का वाहक फुरुदा कामुं मालिकां कमा सरुकारु के कुंफुनी तका बेहे वजीरु के नैप अहमद सईद मुस्तफा विदार्वी क्रेडिट रेटिंग नल्लिबुनु मी कुरियरु मुगे मैगनु सवकी सरुकारु गेनिस पावा रेवेन्यू साइड रिफॉर्म तक कमा। मीगे तेरेगा दौलत के आमदनी इतुरु कुरुमं अलाफा वाफिया वर्दका बेर फैसाया गुलेगोतुं गानुनु के दर्शन तंफेज कुरा कंतत्तं हिमिने कं एना फाहग कुरेवे। एक्तिसोदी हालतं अलियल वालवमुं सईद विदार्वे मेहर की दुनिया के एक्तिसोद लोलुं तकें या आहरे नमविस राज्य के एक्तिसोद मेदु रास्तागा रोबस्टली नुवता वरुग दको कुरिया अराने कमा अंदाजा कुरवे कमा आदि माली उजारा के एसेसमेंट तकों वेस एक्तिसोद रीबाउंड वे रंगलु मिस्टावका दतुर कुराने लफा दतुर कुराने कमा लफा कुरवे कमा। हाजुवेलिंग एम्बुरी आउमफाव साध दुवस वंदें सीही हालतु मोनीट कुरुमा हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी HPN इल्तमास कुर बैफि। हाजुगे अरुकमफाव दिवी हज्जाजिं एम्बुरी अन्ना वनी फशाफा। PSM न्यूस के राज्य में दु प्रोग्राम का वाहक दकामुं HPA के डिरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ सना सलीम विदाल्वी गिना बयकु एव्वे उले तनिका उल्मफो अन्नेरु बलीगे अलामाते वगुतुं फेननमविस साध दुहगे मुद्दत सिही हालतु मुनीट कुरुमकी मुहिम कमेकमा। मिदोस कोलु गैंग यंगारा बलितं इतुरो मुं अन्नाती एकं HPA मुनीट कुरमुं अन्नकमा सना विदाल्वी। अदिमिफद बलित गिना दुस्वरु बैयेगे अलामाते फेननमा अवहर डॉक्टर का देकुमा एना अल्तमास कुरेवे। ગેંગેંગરા બલિતં ઇતુરે ફાવા મિ દોસરુ હજ્જું એમ્બુરે અન્ના ફરાયતકું ખાસ સમાલ કમે દિન મશા મિસ મીડિયા ગે મનસતહુગા HPA ઇન દે મુંદા ઇરશાતકા સમાલ કં દિનમા ડિરેક્ટર ઓફ પબ્લિક હેલ્થ ઇલ્તમાસ કુરેવે। રાજ્ય મિયદુ પ્રોગ્રામ કા વાહક દકામુ ટ્રીટોપ હોસ્પિટલ ગે કન્સલ્ટન્ટ ફેમિલી મેડિસિન ડોક્ટર ઇબ્રાહિમ યાઝ વિદાલ્વી મિયહરુ फेटनी सुरे वायरल हुमा रोगा के केस तो गया था तो दरनुवा कमशा डेंगिया इन्फ्लुएंजा के केस तं इतुरो मुंगन्ना कमा। मिदे बे यकीवस एकाल अलामत के होना दे बली कमशा दे बली गवस हुंग्यास बुलगारिसा गैगारिसा कं एना फाहग कुरेवे। STO ge dashun hinga muganna base biharatan anajulema ge evana dohu daulat ke base company state pharma ge dasha badalwane kama e company vidalweje। PSM news devi interview ka wahaka dakamu daulat ke base company state pharmaceutical ge managing director डॉक्टर शाह माहिर वने company mihar base genome ge maseke fasha pawa kan hamukura wafa। दिवे राज्य बेनुवा बेहुगे दतिकं हलुकुरुम सरुकारुं उफेदी स्टेट फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी बेस गेनोमा रयतुन बेस फोरु को दिनुमुगे मसेके फशाफा। ए कंपनी बनी इमिकम खास पोर्टल ले तारफ को ए पोर्टल में देरिको बेस सीटी या गेनवगे दे हफ्ता तेरेगा बेस लिबेने इंतिजाम हमजिस्मा मसेके फशाफा। दौलत के बेस कंपनी के मसे के तका गुड़ेगो तुम PSM मध्य वे इंटरव्यू का स्टेट फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शाह माहिर विदार्वी मी मसे के फेशीरु एम ए बोरा फाहगवी राज्य का बेहु गेस्टो कुहुरी मिमर बेले ने रंगल निजाम ने कंकमा एहें कमुं कंपनी एम ए इसका में दिनी ए निजाम गायम कुर्मकमा एना विदार्वी। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਵੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਕਰੇ ਗਦਰ ਨਾਮ ਗਿਆ ਖਬਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਨੀ ਖਬਰ ਲੜੇ ਸੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋਰਿਆ ਬਿਫਨਸ ਅਮਾ ਰੱਖਾ ਤੇਰੇ ਦੁਹੇ ਕੇ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਦਿਵੇ ਐਫਐਮ ਨੂਦੀ ਹੈ ਕੇ ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਦਿਵੇ ਹੰਗ ਮੁਨੀਫੂ ਹੈ ਫਿਲਵਾ ਦੇ ਨਮੁਗਾ ਅਬਦੁਸ
2: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ಮೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು।

ए अजाब आइस जेहुनीमा दैंत्य बैमी हूँ एकलांगे ईमाम वी हि ये अदि अंगवान ते त्यबैमी हूँ त्य ईमाम वनी मिहारु हि ये त्यबैमी हूँ फरसारागे गुतुम ए अजाब नाइस लसवेगे अवस्वुं एदि उलुनी मुए।

0: अजल वही हैं बारु बादु वेता खुतुनते हैं
1: ईवे
0: हबरु दनी हैं मगे मुनु गलकुनु लेवे हैं
1: ईवे
0: जखम वणी हैं मारु हाल।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

भरने पे, या लिखूं उस चांदनी के मरने पे, या लिखूं तेरी नजरों के जादू पे, या लिखूं उनके शर्मा के झुकने पे, या लिखूं उन पहाड़ों के बारे अब जिनके किनारे हम सड़कें बनाकर तो कहने को घर जा रहे हैं सफर।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: दन्नाशे हम कशरु उड़ुतकाय बिमगा वाहा तकेति मिल्कवे वडिगिम्वनी अल्लाहशे दन्नाशे हम कशरु अल्लाह गे वादु फुलकी हक तिदु फुले एहने कमकु एवरें कुरे गिनमी हुं एकमें नुदनेते
1: हुआ युही व युमीतु व इलैही तुर्जाउन
0: दिरुवनी वेस अदि मारु गन्नवनी वेस एकलांगे अदि थे बैमी हुं रुजूअ कुरव्वा हुशी हमा एकलांगे हजरत शे।